तरफ मुंतकिल हो रही है। ताहम यह रसीब पानी की तेज रफ्तार तरक्की अपने साथ संगीन मालियाती साथ खतरात भी ला रही है। रेगुलेटर्स और प्रोड्यूसर्स जो बरसों से आजाद मंडी आजाद तजारती नुकता नजर के साथ काम करते थे, अब इन बेकाबू लागत में इजाफे पाबंदियों के नतज का सामना कर रहे हैं। यहाँ माली इंतजार का खतरा भी पेश पेश है। अगर हम एक बैटरी पैदा करिंदा चिप फ्राहम करना जोग्राफी सियासी बहरान की वजह से काम बंद कर देता है तो ये डोमिनो असर को मुंतरी कर सकता है, जिससे दुनिया भर में दर्जनों मोटरसाज फैक्ट्रियां हजारों जेली मैन्युफैक्चरर्स बंद हो सकते हैं। इस शो में अचानक तब्दीली से इंजन के रवायती पुर्जे तैयार करने वाले हजारों छोटे कारोबारों के दिवालिया होने का खतरा है, जो इस चीज को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। इन सब के नतीजे में बेरोजगारी उरूज पर पहुंच जाएगी। तो ये नई सरमायाकारी की हिकमत अमली कितनी पायदार काबिल इत्तमाद है, हमें यहाँ पर हम आहंगी के म्यार पर भी सवाल उठाना चाहिए। माज़ी में किसी एक फ्राहम करिंदा या किसी एक मुल्क पर इन्हसार करने के भारी अखराजात ऑटोमोबाइल फर्मों की निगरानी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक अंधापन को बेनकाब करते हैं। सरमायाकारी का माहौल फिलहाल इलेक्ट्रिक और खुद मुख्तार गाड़ी के बारे में काफी पुरजोश दिखाई देता है। तहम सार्फीन मकामी माशरे अचानक मुंतकली की वजह से होने वाले ज्यादा अखराज न काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह खुश नहीं है। यूरोप में कुछ कायमशुदा ट्रेड यूनियंस लेबर यूनियन के रहनुमा दूर दराज की जोग्राफियों या सॉफ्टवेयर पर मबनी ने तश्कील शुदा कंसोर्शियम में पैदावार की तेजी से मुंतकली के बारे में गहरी तशवीश रखते हैं। इसकी वजह यह है कि रवायती सनत के बरक्स इसने तकनीकी सरमायाकारी ग्रुपों के लिए पैदावारी तनसीबात माशरती विरसा या रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि वो डिजिटल असासे हैं जिनसे मुनाफे के अमल के जरिए इस खेल से बाहर हो जाएंगे। सामिन आजम ने हरे मैदानों से सड़कों तक फैलने वाली फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइंस के किस तरह एक जड़ी जोग्राफी मीशत की तजर्बाकार की माहिर तैयार करने का जायजा लिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ इंजन की ताकत आराम और राइज से ताल्लुक नहीं रखती, ये नायाब जमीनी अनासर सॉफ्टवेयर के गलबे फारती चालबों आलमी तजारती जंगों का मजबू है। सप्लाई चेन में ये बुनियादी तब्दीली रुकावट रवायती सनती इदारों जवाबत को मतरूक करने की सलाहियत रखती है। अगर खाम माल या टेक्नोलॉजी का छोटा सा कंसोर्शियम आलमी चिप बैटरी नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो खेल के असूल अब आजाद मंडी की मईशत नहीं बल्कि इन अचारातारियों इनके पीछे बड़ी ताकतों के जरिए तय किए जाएंगे। डिजिटल आलमी दौर से लाख खतरा की तरह सनती दुनिया ने अपने नई ताकत के मुहरकात कमजोरियों को जन्म दिया है। सामने इसके साथ हमारा आज का सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होता है। आइंदा हफ्ते दोबारा पेश खिदमत होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान इमरान अपुल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जुग्राफियाई मईशत।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: वाशिंगटन तेल अवीव के दरमियान बैरूत का बहरान पैदा हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया है। फॉक्स न्यूज चैनल पर फोन के जरिए बात करते हुए ट्रंप ने बैरूत पर इसराइल के हमले पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और नेतन्याहू के बारे में कहा में फैसले की कोई सलाहियत नहीं। इसराइल की इस कार्रवाई को अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को बिगाड़ने की कोशिश करार देते हुए ट्रंप ने बताया कि आम हालात में ईरान के साथ जिस मुआहदे पर कल सुबह दस्तखत होने थे वो इस हमले की वजह से ताखीर का शिकार हो गया है। अमरीकी सदर ईरान के तमाम रुकावटों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे पर आइंदे हफ्ते यूरोप में आमने सामने बैठकर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। वाज़ेह कि इसराइल फौज ने इतवार के रोज लुबनान की तरफ बैरूत के इलाके दाहिया पर फजाई हमला किया था।
2: इलाकाई हुकाम का कहना है कि मास्को की जानब से मुतअद्दिद बड़े शहरों में हमलों की लहर देखी गई है और इन हमलों में यूक्रेन में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। कीव की फौजी इंतजामी के सरबराह तिमूर टिकाचेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि कीव में 23 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। अफसोसनाक तौर पर हलाक शुदगान की तादाद 4 तक बढ़ गई है। इससे कबल दाखिली उमूर के वजीर इगोर क्लिमेंको ने कहा था कि मशरकी यूक्रेनी शहर खारकीफ में आग बुझाने के दौरान रियासती इमरजेंसी सर्विस के 5 रेस्क्यू कारकुन हलाक हो गए। क्लिमेंको ने टेलीग्राम पर लिखा कि कम अज़ कम मजीद 5 जख्मी हुए और बताया कि ये जानी और माली नुकसान एक बार फिर रूसी हमले के नतीजे में हुए हैं। शहर के मेयर विताली क्लिचको ने पीर को कहा कि कीव पिछले लावरा के मारूफ ऑर्थोडॉक्स कॉम्प्लेक्स में वाकई डोरमेशन कैथेड्रल में रूसी हमलों के बाद आग के शोले बुलंद हुए। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि डोरमेशन कैथेड्रल की छत जल रही है जबकि कई बड़े यूक्रेनी शहर बशमूल कीव हमलों की जद में हैं। इलाके के गवर्नर ने भी कहा कि दरियासना एक यूक्रेनी ड्रोन हमले ने रूसी शहर टूला जो कि मास्को के तकरीबन 200 किलोमीटर जनूब में वाक़ है उसमें 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो चुके हैं।
1: यूरोपीय ने तवील तखीर के बाद यूक्रेन की शमूलियत की दरख्वास्त को अगले मरहले पर मुंतकिल कर दिया लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि कीव के लिए मुकम्मल रुकनियत का रास्ता सहल बन रहा है। 27 मुल्क इस ब्लॉक के वज़रा खारजा यूक्रेन मुल्क मोल्डोवा के साथ यूरोपीय कवानीन के पहले रुख के मुताबिक खुद को डालने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। यूक्रेन की पेशरफ लगभग 2 साल से रुकी हुई थी क्योंकि हंगरी के रहनुमा विक्टर ओरबान हर पेशरफ पर वीटो कर रहे थे लेकिन अप्रैल में इनके हरीफ पीटर मक्यार के हाथ इनकी इंतहावी शिकस्त ने इसका रास्ता खोल दिया। यूरोपियन की सरप्राय उर्सुला वॉन डर लीन ने यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के साथ मुश्तरक बयान में कहा इन असलाहत को आगे बढ़ाने में दोनों मुल्क की तरफ से दिखाई जाने वाली अज़्म हिम्मत एवं मेहनत का इतराफ है जो उन्होंने इंतहाई मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद दिखाई है। बढ़ती हुई गैर यकीनी की सूरतहाल से भरी दुनिया में यूरोपियन का बड़ा होना हम सबके मुश्तरक मुफाद में होगा। अलबत्त खालिस अमली लिहाज से देखा जाए तो यूक्रेन के कवानीन इदारों मैयार को यूरोपियन के मुताबिक ढालने के लिए तहाल बहुत बड़ा काम बाकी है। इसमें माहौलियात सराह से लेकर इंसाफ और सलामती तक हर चीज़ का इहाता करने वाले 35 अफवाह पर मुजाकरा शामिल हैं जिन्हें 6 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक यूरोपीय सफरकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर एएफपी को बताया कि तवील अमल है यूक्रेन जंग की हालत में से मुनज़्ज़म जराइम के मसाइल हल करने हैं।
2: और 2026 फीफा आलमी कप के लिए अमरीकी वीज़े ना मिलने के बायस ईरानी टीम के मीडिया अमले के दोनों अरकान अभी तक बाकी अमले के साथ सफ़र करने से कासिर हैं।

क्या आप कभी पहाड़ की चोटी पर गए हैं या आपने कभी ऐसा करने का सोचा है? क्या यह खतरनाक और चैलेंज करने वाला अमल आपको पागल लगता है या आपको लगता है कि इसे ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर आज़माना चाहिए? पहाड़ और इनकी चोटियाँ कुछ लोगों के लिए एक नागुज़ीर जज्बा हैं। कोह पैमाओं का कहना है कि इन चढ़ाइयों से दुनिया में इंसान के मकाम को समझना मुमकिन है और मुनासिब

को है अरारात, वो पहाड़ है जो कुरून वुस्ता के मशहूर सयाह मार्को पोलो ने कभी नहीं चढ़ाया जा सकता। उसका तذکرہ हिकायात और सहीफ़ों में भी मिलता है। ख्याल किया जाता है कि नूह की कश्ती इसी पहाड़ पर है। बहरी जहाज को तलाश करने के ना ख़त्म होने वाले अज़्म के साथ वो सालों से कोहे अरारात पर चढ़ने के शौकीन हैं। कोहे अरारात अपनी शान और शौकत से लोगों को हैरान कर देता है और उन्हें हिला कर रख देता है। ये कंजूनगियोतों का भी घर है। पहाड़ की जसामत को समझने के लिए उसे दूर से देखना पड़ता है। यह पहाड़ है जो कहता है कोहे अरारात तुर्की की बुलंद तरीन चोटी और सबसे बड़ा आतिशफिशा पहाड़ भी है। ज़िला इदिर और आरी शहरों के दरमियान उठने वाला पहाड़ इतना शानदार है कि साफ मौसम में इसे आर्मेनिया, ईरान, आजरबाईजान और जॉर्जिया से भी देखा जा सकता है।

अनातोलिया के इस बुलंदतरीन पहाड़ का तذکرہ अनातोलिया के शानदार महलात में से एक के साथ मिलता है। ये महल जो ऐसा लगता है कि ये 1000 रातों से निकला है, आशिक पाशा महल है जो उस्मानी दौर के अहम तरीन तामीराती कामों में से एक है। आज आरी के ज़िला दो बयाज़ीत में वाक़ है। ये महल एक पहाड़ी पर बनाया गया था जिससे ईदर मैदान नज़र आता है। ये महल जो ऊपर से पुरानी शाहराह रेशम को देखता है, अनातोलिया का वाहिद महल तसव्वुर किया जाता है जो उस्मानी दौर से आज तक जिंदा है। आशिक पाशा महल की तामीर में 99 साल लगे थे। महल की तामीर 1685 में चोलाक अब्दी पाशा ने शुरू की जो चिल्दर के अताबेगों में से एक था, और 1784 में इसी नसब से ताल्लुक़ रखने वाले कोक आशिक पाशा के दौर में मुकम्मल हुआ। इसे इलाके के सबसे अहम कामों में से एक समझा जाता है उस वक्त और आज भी। ये शानदार इमारत जिसमें सल्चुकी, ईरानी और उस्मानी फन तामीर के आसार मौजूद हैं, अपने बारोक और रोकोको अनासिर के साथ भी तवज्जो मबजूल कराता है। महल जो देखने वालों को मशहूर करता है, मुख्तलिफ सकाफतों की तरकीब की अक्कासी भी होती है। तारीखी आशिक पाशा महल जो यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल है, तुर्की के फन तामीर की तारीख में सबसे खूबसूरत कामों में से एक समझा जाता है। आशिक पाशा महल न सिर्फ अपने महल वकूअ और शानदार फन तामीर के साथ फन की एक यादगार है, बल्कि इसके यादगार दरवाज़ों और शानदार पत्थरों के नमूनों के साथ भी ये आज एक मायानाज मकाम रखता है। आशिक पाशा महल तोपकापी महल के बाद आखिरी अहम यादगारी इमारत है जो सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा महलाती ढांचा है। महल के कुछ हिस्सों को सिंगल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, कुछ हिस्सों को दो के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, कुछ हिस्सों को 3 मंजिलों के तौर पर तज़यीन किया गया है। दो बड़े सहनों के गिर्द दीवान, हरम मस्जिद और कमरे भी बनाए गए हैं। आशिक पाशा महल मकामी पत्थरों से बनाया गया था। रेलिफ्स, जेवरात और पौधों के नक्शों में मास्टर स्टोन वर्क आपको मशहूर कर देता है। महल की संग तराशी दुनिया की बेहतरीन मिसालों में से एक है। महल जो 27,600 मुरबा मीटर के एक बड़े रकबे पर बनाया गया था, इसमें वह तमाम ढांचे मौजूद हैं जिनकी एक छोटे शहर को ज़रूरत होती है। हमाम, बेकरी, तंदूर, गार्ड वार्ड्स, नौकरों के कमरे, कमरे अदालत, जेल वगैरह, ये महल के अहाते में सिर्फ कुछ ढांचे हैं। किला बंद किले से मुशावरत रखने वाले और 300 से ज़ायद कमरों पर मुश्तमिल इस महल का माहौल काफ़ी दिलकश है। एक लामहाला इसके बारे में सोचता है कि इस हजम की इमारत को किस तरह गर्म किया जाता होगा। इसहाक पाशा महल इस पहलू से तवज्जो मबजूल कराते हैं क्योंकि हरारती निज़ाम सैकड़ों साल पहले लागू किया गया था। महल को गर्म पानी से गर्म किया जाता था जिसे चूल्हे में उबालकर मिट्टी के पाइपों के जरिए गर्दिश किया जाता था। हकीकत यह है कि आज के सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जैसा ही एक तरीका इमारत में इस्तेमाल होता था, जिसे आज भी हैरत और तारीफ के साथ देखा जाता है।